0: बताएं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।